वो दिन से मिस आए हैं मुकने को नकी तनिया उस तो सीता दी मर्चेंट की इवन ने दिली तनंग दो तन बंगिस